तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वदी कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तां आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहा, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना सी। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां, आ मैं हुणे दसदा हां। अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बादे सब। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा ए मेरे अहंकार नूं दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा रब। हो सकदा मैनूं तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनूं तारन आया होवे, मन नीवां हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर। सेवा तो बिना तेरा शरीर निष्फल है, सिमरन तो बिना तेरा मनुष्य जन्म सफल नहीं हो सकता। होर जितनियां भी तेरियां करनियां हन ओ किसे काम नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक बड़ी सुंदर रमणीक थां ते समुंदर दे किनारे आप जुड़े बैठे हैं।

لاہور جا پہنچ شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹ دنی چند اتوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی دکیا ब्राह्मणा नु भोजन छकारे बड़े पदार्थ बनाए हुए हैं धन गुरु नानक पातशाह पूछन लगे दुनी चंद अज आ ब्रह्म भोज कैसा कर रहे हो कोई खास दिन है तो दुनी चंद ने आख्या महाराज अज मेरे पिता दा श्राद्ध है ते 100 ब्राह्मण नु सद के भोजन छकाया धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई तेरे पितर रज गए हन आख्या जी ब्राह्मण तां एवें कह रहे सी ओ तां कहंदे तुर गए हन भाई दुनी चंद तेरे पितर बड़े खुश हन बड़े सुखी हन स्वर्ग विच बैठे आनंद मान रहे हन ता धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे दुनी चंद तेरा पिता ता 3 दिन तो भुखा है 3 दिन तो उसनु कोई खुराक नहीं मिली ओ शेर दी जूनी विच है महाराज मेरा पिता बड़ा धर्मात्मा सी पुन दान करन वाला सी ते शेर दी जूनी विच है धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे इसका जवाब तैनू तेरा पिता ही देवेगा तू डरी ना आ ऐश दशा वल चला जा इतनी दूर जाएगा ते शेर बैठा होवेगा डरी ना ए भोजन उसके अगे रख दे ओ शक लेगा ते फिर ओदे विच समर्था आ जाएगी तैनू दसन दी शेख दुनी चंद जिवें साहिब जी ने दसिया सी जाके कीता जंगल बियाबान विच चला गया अगे सचमुच एक शेर बैठा है जा भोजन अगे जाके रखिया क्योंकि दुनी चंद गुरु नानक दे दर्शन करके गया सी शेर ने दुनी चंद दे दर्शन कीते मन निर्मल हो गया भोजन छकिया ते बोलन दी समर्था आ गई आख्या दुनी चंद सचमुच मैं संसार विच आके जतन कीता चंगे कर्म करन दा पर मैनू पूर्ण गुरु नहीं मिलिया जिस करके मेरे जपा तपा नू भाग नहीं लग सकिया मन एकागर नहीं हो सकिया क्योंकि बिना गुरु तो ए दरगाह दा बुआ कोई होर नहीं खोल सकदा अंत समा जदों आया तां किते गुआड मास रिन्या जा रहा सी ओ वाशना मैनू पई ते मेरा जी कीता बई मैं जे किते ए मास बनया होया मिल जांदा तां शक रहेगा इतने नू श्वास पूरे हो गए ते अकाल पुरख ने ईश्वर ने मैनू शेर दी जूनी दे दित्ती जिस करके मैं मास खा खा के गुजारा करता रहा अज मेरा उधार होया है आप निरंकार तेरे घर चल के आ गए हन दुनी चंद तू उना दे दर्शन कीते असी तेरे दर्शन करके बैकुंठ नू जा रहे हां जा उना दे चरण फड़ उना कोलो सुमति लै उना दी सेवा कर तेरा मनुच्छा जन्म सफल होवेगा क्योंकि गो

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नू आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमा।

रात दिन कर पिया मजूरियां जितनियां मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै अंत वेले तेरी किसे ने शह

इस चौपाई देवी च अपनी नहीं सारे संसार की सुख मंगते हैं। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। चौपाई की शुरुआत हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। गुरु नानक नाम लेवा दुनिया दे किसी कोने भी बैठे हो, जद भी पंजा बाणिया दा उपाठ करते हैं ता चौपाई साहब दा पाठ भी जरूर करते हैं। औखे वेले भी कोई पीड़ बने ता संगतां बड़े प्यार दे नाल चौपाई साहब दा पाठ कर दिया है, क्योंकि गुरसिख दे मन दी जिथे ए लालसा हुंदी है पाठ करन दी, उथे भरोसा भी है। इसे वास्ते गुरसिख दोनों वक्त होर बाणियां दे नाल चौपाई साहब दा पाठ भी करते हैं ते नाले कहंदे हन तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। तो जो चाहिदा है वो तेरे कोलों मिल सकदा है, इस करके तेरे सिवा मैं हो

अपनी पोती दे नाल रात दे हनेरे विच बरसात विच तुरिया जा रहे हैं। जंगल खत्म होया, कुछ पठान बैठे नजर आए, अग बल रही है। ए दादा ते पोती उन्हां पठाणां नूं कहण लगे, रब तुहाडा भला करे, साडे कपड़े गिले हन, कुछ समा अग सेक लैण दिओ। उन्हां पठाणां ने इस बाबे नूं देखिया जिहड़ा अखां तों अन्ना, मन विच बुरा ख्याल आया, ए बाबा की साडा बिगाड़ सकदा है। ए सोच के उस लड़की नूं अपनी कैद विच पाया, पर वो लड़की किसे तरह कैद विचों भज निकली अपने बाबे दे नाल। फिर पठाना ने घेरा पाया, इन्हां नूं मारन लगे। इस बच्ची ने हाथ जोड़ के कलगियां वाले पातशाह दे चरणां विच अरदास कीती, हमरी करो हाथ दी रक्षा। अरदास कीती, तोड़ उड़ दी नजर आई, उस तोड़ विचों शां शां दी आवाज करदा एक तीर आया, उस पठान दे लगा जिहड़ा बाबे नूं मारन लगा सी। देखदिआं देखदिआं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत आ पहुंचे हन। उन्हां दोनां दी रक्षा कीती। उस बाबे ने, उस बच्ची ने सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिआ। इस बच्ची दा रोना देख के साहिब जी कहण लगे, बेटा रो ना, जद भी कोई प्यार ना गुरु दा ओट आसरा लैंदा है, ते गुरु हर वेले उन्हां दी रखिया करदा है, तां ते आओ पाई आपां वी होर आसरे छड्ड के

पानां पान देवां दे उपमा महा कलगीधर पातशाह कहिंदे ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने, कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे नहीं, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने इना

तेरे बगैर साड़ी सुरत किन्ने लैनी कृपा कर किवाड़ खोल ते सानू दर्शन दे।

कुछ आत्मक मंडला वाले लोग बैठे हैं, एक तख्त पोश है, उस महल का फर्श मानो हजारा तारे जड़े हुए ने, छत मानो लखा ही चंद्रमा जड़े हुए ने, तख्त पोश भी सूक्ष्म शैदा बने हैं। इस तख्त पोश से एक दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिदे विचों करोड़ा सूरजां दी रोशनी निकल रही, पर ए रोशनी गर्मी नहीं देंदी, जीवन दान देंदी। ओ दिव्य मूर्ति जिदा कोई अंग नहीं, कोई रंग नहीं, पर फिर भी सब कुछ है। तेजस्वी पुरुष दे नाल दिव्य मूर्ति दे सामने असी भी होए हैं। तेजस्वी पुरुष ने सिर झुकाया, दिव्य मूर्ति विचों आवाज आई, हे प्यारे नौ जामी धार के और अनेक कष्ट सहार के, जो तैं दुखी सृष्टि पर परोपकार कीता, मेरी प्रसन्नता दा कारण बने है। हे प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, देव मूर्ति कौन है जिन्हों आपा अकाल पुरख कहने। तेजस्वी पुरुष दुष्ट दमन कलगी तर पातशाह, जदू ए क्या ऐ दुष्ट दमन ऐ प्यारे तू हुण मातलोक विच जा, ते कलगी तर पातशाह आप कहंदे ने कि उस वक्त ए हुक्म सुन के ते साडा मन जिहड़ा सी ओ मातलोक विच आण नू मन्या नहीं, जिहा कि आप साहिब जी लिखते ने।

0: समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच, जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपा

थियो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए। Embrace love for Guru's Bani. When the Guru shows mercy, pain is destroyed.

कोई छे छे कर्म सत सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भवान है वो उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले उस समय याद आता उस वेले ऐ लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुर देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागा बोले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर नूं चलिया पर रोण बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवां, जी करदा सी उची उची भुवां मारां। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन

ਸਾਰੇ ਹੈ ਚਾਰ
गया जिसे मेरे चंद्रनाथ के पास पैदल कर गया या मेरे मत किया अरुण मित्र किया जो क्या था फिर किया नारद सिद्ध किया आओ बैठे मरदाने में तो किया क्या भाई तू कर रहा है इन्हें किया था कल का मीरा में तो पाई फिर दर्द है आज कितनी वर्दी है इतनी खुशबुआ कि कृपा करो कहने लगा पता लिया ये सारी कृपा मेरे धन गुरु नानक गुरु नानक की भक्त अगर कहने लगे मैं बता लिया सच नहीं बाबा ये जड़ी चीज के रीते हो एडी वी जात अगर कहने लगे बता लिया एडिया प्यार वाली होर कि देखिए

0: मारते नाकाम भी।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत,
2: अब उपदेश है
0: आप ना करें
2: आप जावत।

0: तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरा अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर्जम में सो कट कट महला पहला
2: बड़ी बड़ा जब बड़ा

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार वेद बिस्मार जी बिस्मार पे बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खिरे बनाने बिस्मार तर्जी बिस्मार खानी बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नुक बिस्मार बिरुक बिस्मार पुख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेने बिस्मार दू बिस्मार देख हादरा दू देख बड़ान रिया बिस्माद नानक बुद्धन पूरे पा
2: महला पहला कुदर जिसे कुदर सुनिए कुदर पास।

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसे भी संगीत ग्रंथ राग किसे राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के की जाती है। इसका वादी सुर ऋषभ अते समाधि पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्या है। सरवण करो रे मन कौन गत होए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द दे बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी,